0: So the name of the raga is Jinjoti. It goes by the name of Chinjuruti in the South Indian or Carnatic tradition, Jinjoti in the North Indian or Hindustani tradition. Let's get Khurshid Anwar on board to tell us a little bit more about this raga.
1: Jinjoti khamaj thaat ka sampoorn raag hai. Khamaj ki tarah isme bhi dono nikhad lagaye jate hain. Vadi sur gandhar aur samvadi nikhad hai. गाने का वक्त रात का दूसरा पहर है. इस राग की शक्ल खमाज से बहुत मिलती है, इसलिए समझदार गाने वाले इसमें निखाद की जगह धेवत को संवादी रखते हैं. और वो जब रिकब को आरोह में रेमा गा की शक्ल में दिखाते हैं तो वहीं झंझोटी नजर आने लगती है, क्योंकि खमाज के आरोह में रिखब वर्जित है और धेवत दुर्बल यानी कमजोर है. खमाज की तरह इस राग का ख्याल भी कम सुनने में आता है. जिंजोटी एक सीधा सादा आसान मगर दिलावेज राग है और गायकों ने इसे दूसरे रागों के साथ मिलाकर ठुमरी, दादरे और टप्पे की बहुत सी बंदिशें तरतीब दी हैं जो सदाबहार हैं. पकड़, धासा, रेमागा, पामागारे, सानी धापा, आरो, सारे गामा पाधा नीसा, अवरो, सानी धापा मागा रेसा.